तू मेरे काम लग जा मैं तेरे काम लग जाना मैनू तू अपना काम दे दे ते मेरा काम तू ले संसार च ऐसा चल जाता एक दूसरे दे काम आना जिस काम की जिदी जिनी समर्था हो बड़े पुराने समयां तो बंदा काम का लैण देन करता है जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता जेड़ा कर सकता है उन्हूं जाके बेनती करा तू ये कर दे इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस एक दूजे दे काम आ सकी संसार किसी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा कीता है

महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर कम आउण दी एक दूजे दा कम करन दी सांझ पाउणी है तू लालू नाल पा के दे। मालिक तू जो चाहे कर सकना है, तेरी समर्था महान है, करता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है। ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैथों कुछ भी नहीं हो सकता। जब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा, अरदास हो सकती है। और सच्ची गल जानना, अरदास च खड़े हो जाना ही रब का कम है। ओदे कम लगन का मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए, ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे में। और जिस वेले साडे हथ जुड़ जाण, मस्तक न्यो जाए, इहदे दो अर्थ हुंदे ने। हथ जुड़ जाण का मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना, इन्हां हथां ने कुछ नहीं कर सकना, इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं, ये हथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने, इन्हां हथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन। आप करता पुरख हो, इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना, यह हथ बज गए, यह हथ तेरे सामने जुड़ गए, इन्हां तो कुछ नहीं होना। एक तो दोवें हथ बन के सत्कार हुंदा है ना, किसी दूसरे का अभिवादन करना हो, आदर करना हो, भी हथ बनने। लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना, बल्कि जिसले मत्था टेकते हैं इहदे पिछे भी दो गोज पाद ने। एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैण आया, लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने, मत्था टेकने पातशाह इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं, इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जा, मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता, मेरे सोचने ची बड़िया भुला ने, मेरी थां सोचो भी तुसी, मेरी थां ते मेरे वास्ते व्योत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी, ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो। मैं तुहाडी अरदास जुड़िया हुआ, अरदास अरदाश्त बेनती कर रहा हुआ, अर्ज कर रहा हुआ, मैं केवल अरदास जुड़िया हुआ। एक ते जुड़ जाए ना बंदा, साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराए, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। ये वखरी गल है, मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, जुड़ना ही औखा है, अरदास जुड़ जाना ही औखा है, नहीं जुड़े रहता तो ये वास्ते भी अरदास करिए, बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए, तू मैनू अपनी अरदास जोड़ दे, अपनी भगती नाल मेरी लिए एकाग्र करने की समर्था मैनू बख्श, फिर मैं अरदास लगा होवांगा, हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा, भगती च लगा होवांगा प्रभु दा।

बेनती करनी है, अरदास ही करनी है, ते किसे छोटे मोटे अगे कानू करनी है। सोई त्याईये जीयड़े सिर शाह पातशाह, जो सब तो पातशाह तो शहन शाह तो वड्डा है। शाह दे सिर ते जो पातशाह है ओदा ध्यान कर, ओदी ओट तक, ओदा आसरा तक।

हूँ बेमुख मंदा चोर यार जुआर हूँ पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अंकार करंदा विश्वास घाती आकृत घन

सत्संग लो न आवई। जैसो मन लागे पराधीन हीन दीनता में, साध संग सतगुर सेवा न लगावई। जैसो मन किरत बिरत में मगन होए,

सोपाहीन पागहीन तपहीन बावरी दृष्ट दर्शहीन शब्द श्रुतहीन बुद्ध बलहीन सूते हस्त न पावरी प्रीतहीन रीतहीन पाए पै प्रतीतहीन चित्तहीन वित्तहीन सहज स्वभावरी अंग अंगहीन।

अनाथ नमो सर, तो सोना दानी नमो सो भिखारी। मोसो न दीन दयाल न तो सर, मोसो अज्ञान न तो सो बिचारी।

गुरु अर्जन देव जी का कातिल दरअसल जहांगीर ही सी, पर जहांगीर तो इलावा मुर्तजा खां ते चंदू दा भी हाथ सी। चंदू बादशाह जहांगीर दा शाही दीवान सी। जदों चंदू दी धी मुटियार होई ता उसने अपनी धी वास्ते चंगा वरकर लभन लई एक पांदे ते एक नाई नू जो कुछ समझा के तोरिया है उन्हां बोलां नू ढाडी जथा हे क्यों दसदा है।

आपने बड़े प्यार दे नाल जिथे सरवन कीता है रचना पवित्र भी कीती है नाल मिल के कीर्तन कीता है। ए कबीर जी ने ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था ए शब्द विच दसी है और आखिर विच दसिया भाई ए अवस्था किन्ना नूं प्राप्त होंदी है जिन्हां नूं गुरु की कृपा का सदका नाम की दात मिल जाए ते नाम की कमाई कीतियां ए ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था प्राप्त होंदी है। अल्लो अलख ना जाई लखिया गुर गुर दीना मीठा नाम रूपी गुर जदों गुरु ने मैनू बख्शिया ता फिर मैनू कोई दूसरा पासिया ही नहीं ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनियारी। सो ए दात किन्ना नू प्राप्त होंदी है मैं अगला शब्द जो तुहाडी भेटा कर रहा ओ भाई साहब भाई गुरदास जी दी वार विचों है और भाई साहब गुरदास जी ने गुर सिख दे छे नियम दसे हन इस वार विच। भाई गुरु का सिख कौन अखवाउण दे लायक है जिदे अंदर ए छे गुण हन ओ गुरु का सिख है। उसने आपा परमेश्वर प्रण कर दिता है समझो तो भाई साहब बड़े प्यार नाल ए नियम दस रहे हन और ऐसे गुरसिख तो आप भी बलिहार और सदके हो रहे हैं। कहिंदे हन जिदे अंदर आ नियम वसदे हन बेशक मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े बना के ऐसे गुरसिखां नूं पहना दिओ जिन्हां दे कदम सेवा सिमरन परोपकार लई उठदे हन। सो आओ बड़ा साधारण जिहा शब्द है पर बड़ा अमोलक खजाना है शब्द दे विच सारिआं ने मिल के पढ़ना है। हों तिस घोल घुमाया गुर मत हृदय गरीबी आवे। गरीबी तो भाव है निम्रता। गुरु नानक दे दर ते निम्रता नूं गरीबी करके आख्या गया। गरीबी नूं किसे कंगाली जां भुखमरी नहीं समझना। गुरु नानक दे दर ते बाणी दे विच निम्रता नूं गरीबी आख्या गया। कर किरपा जिसके हिरदे गरीबी वसावे नानक इहां मुकत आगे सुख पावे। सो आओ सारे प्यार दे नाल भाई साहब ने जो एक गुरसिखी दे गुरमत दे छे नियम दसे हन बड़े प्यार दे नाल सरवन करिए।

सुद जब ते हम तरी बचन गुरुदेह हमारे पूत ए है प्राण तोहे प्राण जब लग घट थारे निज नारी के संग नेहो।

एका नारी जति है, एका नारी जति है, पर नारी ती पैन वखाने, वेख पराया चंगिया मामा पैना तिया जाने। ये है गुरशी पहला नियम, निम्रता धारण करनी, सेवा सिमरन परपकार करदिया होया भी किसी गल का मन विच हंकार ना आवे। दूसरा नियम, अपने जीवन नू पवित्र रखना। साहब कलगीधर पातशाह दा वचन आपने श्रवण कीता है। साहब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे हैं, कहिंदे हन जदों मेरे गुरुदेव पिता तिलक और जंजू दे राखे लई हिंद दा धर्म बचाउण लई अपना बलिदान देण वास्ते दिल्ली जाण लगे, तां मेरे पासों एक वचन लिया, शुद्ध जब ते हम तरी बचन गुरुदेह हमारे, पूत ए है प्रण तोहे। आख्या मेरे बच्चे एक मैनु प्रण दे, ते ओ प्राण तेरा प्राणा दे नाल निभ जावे, श्वासा दे नाल निभ जावे। ए प्रण कलगीधर पातशाह ने फिर गुरसिखा को लिया कि मेरा सिख कौन है जिसका जीवन ऐसा पवित्र है। गुरुदेव पिता कहिंदे हन के पूत ए है प्रण तोहे, प्राण जब लग घट थारे, निज नारी के संग नेहो तुम नित बढ़ियो, पर नारी की सेज फूल छुपने होना जी। अपने जीवन नू पवित्र रखना, ए गुरसिखी दा दूसरा नियम है। आओ अगले नियम श्रवण करो प्यार दे नाल।

आवे। पराई वस्तु पई है उस नूं चुक के वरत लेना तां पासे रहा। गुरु का सिख ऐसी वस्तु नूं हथ भी नहीं लाउंदा, भाव किसे दी अमानत विच ख्यानत नहीं करदा, किसे दी चोरी नहीं करदा। गुरु का सिख जो है पर दरबे नूं हथ ना लावे। ए गुरसिखी दा तीसरा नियम है। पहला नियम निम्रता धारण करनी, दूसरा नियम अपने जीवन नूं पवित्र रखना, तीसरा नियम पराई अमानत विच ख्यानत ना करनी। हुण चौथा नियम भाई साहब दस रहे हन।

बच्चों का नेम गुरु का सिख ना किसी की निंदा करता है ना सुनता है। किसी की निंदा करनी इस तरह है कि उदे अवगुणा का भार अपने सिर ते लै लां। भाव किसी ने कूड़े की टोकरी चकी होवे ते खाम खा उदे सिर तो चुक के अपने सिर ते रख लैन। ऐसा है किसी की निंदा करनी जां किसी की निंदा सुननी। तो हजूर बाणी विच बख्शिश करते हैं कि निंदा भली किसी की नहीं पर कौन कर दें मन मुख मुगद कर मूह काले तिन निंदका नरके कोर पम। इसलिए गुरु का सिख गुरसिखी गुरसिख सुन अंदरों स्याणा बारों फोला। गुरु का सिख बारों फोला है अंदरों स्याणा है। किस लई किसे नू नुकसान पहुंचाने लई नहीं। अंदरों स्याणा इसलिए है भई जिथे ता गुरु की बाणी दी विचार हो रही है कान दे के सुनदा मन दे के सुनदा ते जदों निंदिया चुगली शुरू हो जाती है कहिंदा मैं कुछ सुनाई नहीं देंदा मैं चलदा हूं। सात संगत बोलो श्री वाहिगुरु। एक गुरसिखी दा चौथा नियम पहला नियम निम्रता दूसरा अपने जीवन नू पवित्र रखना तीसरा पर दरबे नू हथ ना लावे चौथा नियम गुरु का सिख ना किसे दी निंदा करदा है ना सुनदा है। ऐसे गुरु के सिख लई भाई साहब कहिंदे हन बेशक मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े बनवा के ऐसे गुरसिख नू पहना दे गुरमत तेरी दे।

पंचवा नियम कि गुरु की मोर लगवा के अमृत छक के गुरु वाले बन के ते फिर जो पंज प्यारे सुमति बख्शन ओदे मुताबिक अपने जीवन नु डालना ए है सतगुर का उपदेश कमावे रहनी रहे सारे जपो रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका चेहरा रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना आख्या मैं उदा दास हां मैं उसका चाकर हां जो रहनी बैनी विच पूरा है सात संगत बोलो श्री वाहिगुरु भाई साहब ऐसे गुरमुख तो बलिहार जा रहे हैं जो सतगुरु का उपदेश कमाते हैं।

अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा दया क्षमा तन प्रीत शील संतोख सदा निर्वाहे होवे गोत्रे गुण अतीत थोड़ा समय थोड़ा ही खावे गुर सिख जोगी जाग दे गुर सिख जोगी जाग दे माया अंदर करण उदासी

नवी म्यूजिक मेमोरीज इंडिया फगवाड़ा कंपनी वालों पहले शब्दों की कैसेट संगतों के वास्ते भेंट की है। सच्चा पातशाह कृपा करे कंपनी के मैंबरों अपने चरणों का प्यार सेवा करन दा बल बख्शे।

उड़हो ना कागा कारे, देख मिली जय अपने राम प्यारे। राग कौड़ी दे विच उच्चारण किया हुआ है। भगत

औरत की जो मानसिक अवस्था होंगी है, जो गुरु का दास है, जो गुरु का भगत है, जो भक्ति और बंदगी के मार्ग उत्ते चलता है, कहते हैं उस दे अंदर अजिहा बिरह जो है वह पैदा हो जाता है। उस दे अंदरली जो दशा अजिही वैरागमयी हो जाती है, उसका अंदर जो है अजिही एक लौंगिंग दे नाल भर जाता है। और न भिजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा। तो मैं पहला ही अर्ज की थी कि अज के इस कीर्तन दे विच मैं आप के सामने एक खास किस्म की मनुखी जीवन दे विच जो अनुभव की हुई अवस्था का जिक्र करना है। असी यह देखना है कि साड़ी जिंदगी भी की अजिहे अनुभव दे नाल अमीर है या नहीं। डू वी फील दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसिस इन लाइफ और नॉट। साडे जीवन दे विच भी अजिहे प्रेम दे नाल भरे हुए हिरदिया वाले अनुभव वैरागमयी अनुभव हैं या नहीं है। अते अगली पंक्ति जो असी अस्थाई दी गाई है, मैं फिर तुहाडे सामने गाणी चाहना हाँ। कहिंदे हन उड़हो न कागा कारे। आप सारे जानते हो असी पंजाब चो आए हैं। साडे देश दे विच एक जदों किसे खास अपने मिलन वाले दी पुत्र दी पिता दी माता दी पत्नी दी पति दी भरा दी भैन दी जां रिश्तेदारां दी जिस दे नाल बहुत ही ज्यादा स्नेह होवे, उस दी जदों इंतजार हुंदी सी ते साडे ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਤੂੰ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ।

अगर आप सारे मैं पिछले गीत नच भी किया है इसनु सचमुच एक सत्संग समझते हुए इन्हों शब्दों के नाल अपनी आत्मक अवस्था उच्चा करने की कोशिश करिए। इन्हों शब्दों तो असी अपनी तस्वीर देख सकते हैं। मैं आप जी के सामने अज के इस कीर्तन च एक शीशा पेश करना चाह रहा हाँ जिस शीशे दे विच असी अपने आप को देख सकी। मैं आप जी के सामने साडे सतगुरुओं की जो अंदरली अवस्था है उन्होंने स्टेट ऑफ माइंड वो रख रहा हाँ ताकि सानू कुछ ना कुछ से चोट लगे कि असी क्यों जहे हाँ अते जिन्हां दे असी अपने आप नू होण दा दावा दिने हाँ उन्हां दे हिरदे किहो जहे हन। आओ हुण इसे ही शब्द से जिस तरह भगत कबीर जी ने अपने अंदरली अवस्था इस दृष्टांत दे नाल पेश कीती है हुण मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज दे कुछ एक प्रमाण आप जी दे सामने रखण लगा हाँ अते आपने देखना कि गुरु अर्जन देव जी महाराज की हार्दिक अवस्था जो है वह किस किस

तेरे अंदर कदे वैराग, तेरे अंदर कदे उदासी, तेरे अंदर कदे उपरामता आउंदी ही नहीं है। पाप उन्होंने कहन का यह है कि जदों अकाल पुरख वाहिगुरु का प्रेम किसी लग जाए तो उस दे अंदर सब तो पहली चीज की होंगी है, बाकी तमाम चीजों के प्रति थोड़ी रुचि घटनी शुरू हो जाती है। जगत के प्रति संसारी चीजों लिए एक उपरामता आनी शुरू हो जाती है। उस उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का आप जी को एक जो श्लोक है वह सुनाना चाहना। कहते हैं

ग्यारह श्लोक है। अगर असी एक बाणी मंत्र हन, अज ही मैं सवेरे एक लाइन पढ़ रहा सी, गुरु साहब कहते हैं सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, कहते हैं है कि तेरी बाणी ही असल अमृत असल मंत्र है। तो इतने हजूर एक कहते हैं कि बिखियन सियो काहे रचियो निमख ना होए उदास। उदास लफज का जो इसके पिछे जो कोनोटेशन है उसनु असी थोड़ा जा ध्यान दे नाल समझिए। असी उदासी तो मतलब समझते हैं डिप्रेशन, गम, जिसनु असी बड़ी नैगेटिव सेंस दे विच लेने। लेकिन गुरबाणी च जदों उदास लफ्ज आता है तो इसके जो भाव हैं इसके अर्थ हैं वह टोटली अलग हैं। हुण असी उदास लफ्ज नु किस तरह समझिए। एक है जो साड़ी जिंदगी दे विच डिप्रेशन आता है, असी बड़े अंदरों एंगजाइटी दे नाल फ्रस्ट्रेशन दे नाल जदों कमजोर हो जाने हाँ उदों भी साड़ी जिंदगी च उदासी आती है। लेकिन गुरबाणी उस उदासी की गल नहीं करती। गुरबाणी किस उदासी की गल करती है उसनु असी इस तरह समझिए कि जदों जिस चीज दे विच साड़ी रुचि होवे ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੋਟਾ, ਇੱਕ ਘਾਟ, ਇੱਕ ਥੁੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੜਾਓ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ उदासी की गल जो करते हैं तो भगत की जिंदगी की एक उदाहरण लैके गल करते हैं कि भगत की जिंदगी दे विच रब दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल प्यार हुंदा है, उसकी रूह की खुराक सत्संग हुंदा है, उसकी आत्मा की भुख पूरी हुंदी है जदों उसनु गुरबाणी गुरबाणी पढ़न वाले की संगत गुरबाणी के विचार अते साध संगत का माहौल मिले। जदों उसनु ए नहीं मिलता तो उसके जीवन दे विच एक उदासी आती है, एक उपरांता आती है। लेकिन गुरु साहब कहते हैं इंसान तुसी हमेशा इन चीजों के ही उलझे रहते हो, फसे रहते हो, खोए रहते हो, तुसी इना दे विचों कदे उपराम ही नहीं होंगे। भाव के तुसी कदे आखते ही नहीं हो, कदे रचते ही नहीं हो, तुहाडी रुचि जो है इन चीजों के विचों कदे निकलती ही नहीं है। कहते हैं बिखियन स्यों काहे रचियो निमख ना होए उदास। कहते हैं निमख भरते वास्ते भी पल भरते वास्ते भी तुम इन्हों छड़ना नहीं चाह रहे, इतनी ज्यादा इन्होंने जिंदगी उलझ चुकी है। निमख ना होए उदास कौ नानक हर भजमना परे ना जमकी फास। लेकिन जदों गुरु साहब साड़ी जिंदगी का मुआयना करते हैं, साड़ी जिंदगी का जदों एनालिसिस करते हैं तो उन्होंने साडे मुतलक अजिहे बाणी च शब्द कहे हैं, मैं आप जी के सामने सुनाना। कहते हैं

प्यासा जो दिसे सो आस निराशा नानक बिरले मिले उदासा। कहते हैं बिरले ही ऐसे सज्जन कोई मिलते हैं जिन्हों के चित उदास हैं, पाप जिन्हों के चित इन तमाम दुनिया के झमेलिया तो उच्चे उठ के कुछ होर लभते हैं। कहते हैं अजिहे सज्जन बहुत बिरले ही मिलते हैं। कबीर साहब उदास हैं, मैं पिछले कीर्तन के एक प्रमाण दिता सी, असी उदास नहीं हैं। उदास का भाव जदों इन चीजों चित ना लगे, जदों आत्मा कुछ होर चाहे, जदों अंदर कुछ होर लगता होवे, जदों खाने च भी रूह ना रह जाए, पहनन च भी रूह ना रह जाए, दुनियावी मल्ला मारन च भी रूह ना रह जाए, जदों चित कुछ होर लभे उसनू कहिंदे हन उदासी। साडी अवस्था जिही नहीं है, कबीर साहब भी है। कबीर साहब कहिंदे

मैं सारी दुनिया की हालत देख के मेरा तो मन उदास हो गया है। मैनू तो इस दे विचों कोई सार नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों कोई तत् नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों कोई काम वाली शायद नजर ही नहीं आती। देखते हैं कि हार जरे जो लाकरी, केस जरे जो काश, ये जग जरता देख के पहो कबीर उदास। तो गुरु महाराज सानू ये समझा रहे हैं कि ऐ इंसान तेरा चित करे ये तमाम कुछ जानदा होया देख के निराश नहीं होंदा, तेरे अंदर कदे उपरामता नहीं आती, तेरा चित कदे इस तो कोई डूंगी चीज नहीं लभदा, तेरा चित कदे अजिही चीज नहीं लभदा जिहड़ी कि हमेशा ही कायम रहे, ना कि तू उन चीजा नूं लभदा रहना है जिहड़ियां ने बिनसी जाना है। तो सतसंग जी अज दी सारी विचार दे विच जो सानूं सुनेहा मिल रहा है, जो सानूं उपदेश मिल रहा है, वो ये है कि गुरु महाराज कहते हैं उस इंसान दे पाक अच्छे हैं। बस इस दे नाल मैं अपने विचार नूं कंक्लूड करनी चाहना। गुरुआं दी नजर दे विच वो इंसान बहुत फॉर्चुनेट है, वो इंसान बहुत ही भागा वाला है, बहुत ही किस्मत वाला है जेदा दिल कुछ होर भी लभे, जेदा चित इन्हां तमाम दुनिया के खाणियां दे नाल भर गया होवे, पोशाकां दे नाल भर गया होवे, जिहदी रुचि बदल गई होवे। असीं इह सुणदिआं सुणदिआं अंदर इह देखणा है कि साडी रुचि बदली है जां नहीं बदली। असीं अपने आप से सवाल करना है कि साडी रुचि की है, असीं जिंदगी च की लभदे हां, किस किस्म दी साडी रुचि है। अते जिस किस्म दी रुचि हुंदी है उसे किस्म दा इंसान हुंदा है। आ हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा एक श्लोक, इस दे उत्ते जो मोर लगांदे हन अपने एक श्लोक दे द्वारा, उसनूं सुनो। कहंदे हन

नित प्रत पाले, प्रेम सहित गल लावे, एक शब्द है प्रभ कीजे कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे हों तुमरी करो नित आस, प्रभ मुए कब गल लावेंगे। कदों वो दिन आएगा जदों तू मैनू अपने गले लावेंगा, गुरु दे गले लगी है सारा शरीर पवित्र हो जाता है, ते जे गुरु ग्रंथ साहब जी दे गले लगी है तन भी पवित्र ते मन भी पवित्र। एक बारी आखो प्यार नाल सतनाम।

प्रेम सहित गल लावे। छोटी उम्र दा कोई 10 साल दा ये बच्चा पता नहीं कौन सी जो इस दे नाल नाल अज गाउंदा आ रहा है। प्रेम सहित गल ला

करके इस जीवन सुचियार बन के इस शरीर नु सच्चा ते पवित्र एक चोला बना लेंदा है। ये हुण सिख ताही बनेगा जे गुरु की सिख्या सुनेगा। भाई साहब कहिंदे ने किस तरह, गुरसिख सुन गुरसिख सिख सधाया। सिख किसनु आख्या जांदा है, जिहड़ा गुरु की सिख्या सुन के अपने आप नु सिख अखवाए। ते सिख अखवाण दा हकदार ही ओ है जिहड़ा गुरु की सिख्या सुन के सिख बन गया है।

ऐसा गुरसिख मिल जाए ओदे मिलिया पाप पुनिठ दा भाव है पापा दा भी नाश हो जांदा है। भाई साहब कहते गुरसिख दा जीवन ऐसा होवे ते मैं उस तो सदके

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, एक तेरे से दुख दफा है जेड़ा अज मैं नवा जीवन मिले। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता रजनी, मेरा रोग तो उतर गया रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, किथे ने, किथे ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी दे दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाड़ लग गए, तुसी मैं छबीर वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: इस सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे। तो मैं रिड़दा रिड़दा ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पे सन।
1: टाणी फड़ के पानी कैसे ना?
0: हाँ।
1: हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, तो फिर ऐसा हाथ में भी पानी पाओ, मैं अपनी अखा नाल इस जल का चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता के दरबार में क्या सपना साकार कर देता। तेरी लीला परम्पारी। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,